करने वाली कहा का कुछ नहीं निर्डन का मिलता तथा करने माता पिता दोनों का भगवान गणेश का बहुत बात करने वाले बहुत भाव का भक्ति स्वभाव करने विनती करने अपने माता और पिता का भक्ति देखते का बेता दे उन्होंने का रहित

करने वाली रक्षा करने वाली, देखो गणपति की भीड़ करने, देखो इंद्र का पोंछा करने वाले, जिसमें का पुत्र का नाम क्या करने वाले, और जिसमें का भातु का अश्वार की ने ऋतविका, जिसमें का भूपिर कर

दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

कैसे ली, कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आंखों, मसीह में सूझे ना क्या कर जाए।